पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां, ओदी महान कृपा नाल सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझदे ने इक नीवी जात दा हो के लोग इहनूं मत्थे टेकदे ने। हैं ए क्यों? बंदे दा सुभा है, बंदा किसे दी वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करदा, किसे दी प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करदा। कबीर जी नूं ए सजा दित्ती गई कि इहनूं पैरां नूं बेड़ियां, हथां नूं हथकड़ियां पा के गंगा विच सुट दित्ता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझदे ने, ते बंदगी वाले पुरुष नूं गंगा विच सुटन लगे। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओहदा जिक्र कीता है। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओहदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। ਤਾਂ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांके हृदय बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां पर मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

सिफत सला करन वाला, कीर्ति करन वाला, उसनु गुरु महाराज ने ढाडी दा नाम दिता है। इतिहास विच

जे तेरे दर्शन करने हो ता दस किथे तेरे दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि तेरे दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। प्रभु दा मिलाप पावे कोई आखे के हथा दिया हथेलियां दे विचकार दर्शन करा दिया, कोई आखे त्रिकुटी चढ़ा के तेन दर्शन करा दिया, कितने ही कर्मकांड करके कोई आखे के दर्शन हो जान, ये नामुमकिन है, ये पखंड है, कर्मकांड है, इंज दर्शन नहीं होंगे उसके। ओदे दर्शन भगवान नारद कहते हैं कि ऐ परमात्मा तेरे दर्शन करने होने तक किथे दर्शन करा, तो कहते हैं कि भगवान ने उस वेले कहा ऐ भगत जे मेरे दर्शन करने हो ना मैं किसे दक्षिण विच वसदा हाँ ना किधरे पश्चिम विच वसदा हाँ, अते ना ही किसे खास स्थान ते मेरा वासा है, ना मैं मंदिर विच हाँ ना किसे मस्जिद विच ना किसे गुरुद्वारे विच ना किसे गिरजे विच, जेड़ा मैनू इन्हां थावां ते लोड़दा है वो भरम विच है, जे मैनू लभना होवे ता मैं जिथे संगत प्रभु दे भगत जन बैठ के कीर्तन करदे होवन उन्हां दियां जिथे जुतियां पईयां होवन उन्हां दी जुतियां दी थां दे उत्ते उन्हां दी चरण धूड़ दे विच मेरा स्थान है। भगवान अपने भगतां दे वस है, उन्हां दी संगत भगत जिहड़े हन भावें जिथे मर्जी उसनू प्रगट कर लैण, भगत ने चाहिया तां पत्थर दे विचों वी प्रगट कर लै, जे भगत ने चाहिया तां उस परमात्मा कोलों अपनी खेती दे विच हल भी जुताया, अपने डंगर भी उस कोलों चुगवाए, ए भगतां दी खेड है जिन्हां नूं प्रतख दर्शन हुंदे हन उस वाहिगुरु दे।

की परियोजना लेके आया है ता अगों गुरु पातशाह जी ने एक सवाल कीता, एक मंग कीती।

कोई रिश्वत खोर हो गए ने। ओही करम धर्म नू भुला के सच नू छड़ के झूठ दा बुरका उड़िया होया है। और ए हालत हुई है

कोई ऐसी वस्तु दे जिसनू मैं संसार दे खुले पटके लोकां नू जाके वरता सकां। अरदास करते हैं

हाथ विच एक भांडा है कपड़े नाल कजिया होया इस पहाड़ी मार्ग ते तुरिया जांदा जवान है तुरिया जांदा है बेपरवाही नाल तुरिया जांदा है अचानक जो ही एक पहाड़ी दा मोड़ मुड़न लगा तां की वेख्या अगे एक बुजुर्ग बैठा हुआ उन्हें बड़े जोर की खंघ आ रही है उदा साह फुल रहा दम फुल रहा ओदे कोलों दी लंघन लगा तो उन्हें इशारा किया जवाना रुक जा ए रुक गया कह लगा बाबा जी दसो मैं की सेवा कर आखन लगा जापदा गुरु का सिख है हां महाराज मीरी पीरी दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह इस इलाके विच आए हुए ने उन्हां दे दर्शनां लई जा रहे हैं बाबा जी कहन लगे गुरमुखा जाते मैं भी उत्थे रहा पर की करा वडेरी उम्र होण करके तुरिया नहीं जांदा नाले सा फुलदा खंघ आउंदी है जो रस्ते विच चलन तो रुकावट पैदा हुई कहन लगा बाबा जी छेती करो मैनु जल्दी है बाबा कहन लगा गुरमुखा आ भांडे विच की लिया होया ते कहन लगा जी इस भांडे विच शहद लिया है माखियो ए मेरे इलाके विच जंगल विच हुंदा है वो शहद तैयार करके मैं गुरु पातशाह जी की हजूरी विच लै चले भेटा वजो लै चलिया बाबा जी कहन लगे गुरमुखा जे थोड़ा जिन्ना शहद मैनु दे दे सुनिया है शहद खान करके दम ठीक हुंदा है साह ठीक हुंदा है ते मैं भी तेरे नाल तुर पवांगा दर्शना लई मैं भी चल पाऊंगा थोड़ा जिन्ना शहद दे दे ए जवान कहन लगा ना बाबा जी ए नहीं मैं कर सकदा एनू तां मीरी पीरी दे पातशाही पहला भोग लाणगे तां किते कोई होर लै सकदा है किसे होर नूं नहीं मैं दे सकदा ए बुजुर्ग बाबा जी कहन लगे गुरमुखा जिस गुरु दे दर्शनां लई चले उसे दा वास्ता थोड़ा जिन्ना शहद दे दे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ते मैं भी तुर पांगा दर्शना लई तेरी मेहरबानी होवेगी पर ए नौजवान गुरसिख कहंदा है ना बाबा जी ए नहीं मैं कर सकदा जे चलना है तो थोड़ी बहुत दूर मैं तुहानू सहारा दे के लै चल सकदा पर शहद नहीं दिंदा ए तो मैं गुरु पातशाह दी हजूरी विच ही भेटा करना है जे चलना ही ता चल नहीं ता तेरी मर्जी उस बाबा नू उस बुजुर्ग नू ओथे ही ओसे हालत विच छड़ के ए तुर पिया पहुंच गया दरबार।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू भुलाया होया।

हे मेरे राम ए साडे नीवे करम मंदे पाग मैड़े करम तू सानू बख्श ले मेरे राम ए नीच करम हर मेरे इना को कर्मा विच पै के असी अवगण ते कठे कर रहे ने साडे अंदर गुण कोई भी नहीं पैदा हो। मैं कई बार बेनती करिया कर दा आप जद गुरु दरबार आईये ना उदो कोशिश करिया करिए के हाथ बन के बेनती करिया करिए हे प्रमात्मा तू कर कृपा मैं थे एक अवगुण छड़ जावा ते इथो एक गुण ले जावा क्योंकि एक एक अवगुण छड़ी जावांगे एक एक गुण ग्रहण करी जावांगे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अवगुणा दा नाश हो जाएगा गुणा दी प्रवृत्ति हो जाएगी। पर जे आपां कोशिश करिए ते तां ही ना हुण तुसी देख लो बच्चे नूं असी नर्सरी च बिठाने आ पहली क्लास विच उस तो बाद अगे वो एक दो तीन करदा करदा किथे तक पहुंच जांदा है। बस इंज समझ लो कि अज असी नर्सरी च आए आ ते गुरु नानक दे स्कूल विच पढ़ना है ते जिस वेले गुरु नानक पढ़ा रहे हुण बैठे उदो पढ़दियां कोशिश करिया करिए मालिक एक सबक रोज दे दे एक सबक रोज चाहिदा है। जे एक एक सबक करदे आ असी उस गुणा नूं ग्रहण करना शुरू कर दिता एक दिन गुण ही रहणगे अवगुण नाश हो जाणगे क्योंकि गुरु नानक दा दर ऐसा है नानक निर्गुण गुण करे गुणवंते आ गुण दे ए ते निर्गुणा नूं गुणवान बना दिंदे हन ते इस दर ते आके भी असी अवगुण नहीं छड्डदे ध्यान देना अवगुण नहीं छड्डदे बल्कि असी आउणा छड्ड दिंदे। कहिंदे ने एक व्यक्ति एक तीर्थ ते गया ते तीर्थ ते बैठिया मुखी पंडित ने आखिया हे भाई तेरे इत्थे बुजुर्ग भी आया करदे सन तू भी आए ओ जदों भी आउंदे सन कोई ना कोई अवगुण छड्ड जांदे सन कोई ना कोई चीज छड़ जांदी सन प्रण करके जाया करदे सन ते तू भी कुछ प्रण कर जा तू भी कुछ त्याग दे तू भी कुछ छड़ दे। कहिंदा तुसी हुक्म करो की छड़ा कहिंदे ने हुण पंडित जी ने कुछ वस्तुआं कुछ चीजां दे नां लै की छड़ सकदा है। जिस वेले अज उन्हां ने ओह अवगुणा दा नां लिया कि इन्हां विचों कुछ भी छड़ दे ए व्यक्ति ए प्राणी कहिंदा पंडित जी जिहड़ियां गल्लां तुसी छड्डण लई कह रहे हो मैं ए ते नहीं छड्ड सकदा हां ए हो सकदा है मैं इत्थे आउणा ही छड्डिया मैं दोबारा नहीं आवांगा। ऐसे भी व्यक्ति हन ओह अवगुण नहीं त्यागदे आउणा छड्ड दिंदे ने कई कई बार औखे हो जांदे ने कि सच दी गल सुनीए क्यों कौन हुंदा कोई सानूं सच कहण वाला आपां जिवें चल रहे हां ठीक है नहीं भाई इस गुरु दे दर ते आए हां आपां कोशिश करिए एक एक अवगुण त्यागण दी ते गुरु सानूं गुण देवेगा ते ऐसा नहीं ना करांगे। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया गल जाणगे इसलिए साहिब कहिंदे ने मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे ते गुणवंता मैं ते अवगुण हारा तेरे दर ते आया हे मेरे मालिक तू गुणवान है तेरे अंदर गुण हन ते तू साडे ते कर कृपा।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के, ते सानू अपनी चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सतसंग तुम ध्यान देना, हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू जिहड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तू किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है किन्ना फखर है ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने ने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी हां, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा दा जिक्र कीता है, कहिंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलदा कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाएगा। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है।

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंदे हैं। इसे वास्ते इंसान इंसान दे नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवां नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा उदों

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नूं जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारिआं विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारियां भुखां तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहे जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहे है पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

एक अल्लाह एक वाहेगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन गुरु दा मेल किन्ना जरूरी।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नू जान लेंदे ने कि सारे विच

मंजिल तक नहीं पहुंचते। गुरु की लोड़ इस वास्ते है कि सच्चा उपदेश साडे हिरदे विच वसे, पर गुरु की प्राप्ति निम्रता प्यार और सेवा नाल हुंदी है। होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, दोनों भगत ने, भगती दोनों भरा करते ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया।

दोनों जने तानी सेठ दे घर पहुंचे। उस तानी पुरुष ने दोना भगतां दी सेवा कीती, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं। दोना भरावां नूं दक्षिणा दीती, माया पेट कीती। होता वड्डा सी, वड्डे नूं वड्डा समझ के चोखी माया। ब्रह्मा छोटा सी।

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपा कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधर और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवा नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनु भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनियां तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल दा बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्त हाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे। गजपत पार उतारे, अनेकां शब्दां विच इस साखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, इह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले, और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया, और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनियां तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले, और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा, पिछे नहीं मुड़िया जांदा, ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है, इसने जोर लाया। कुछ पिछा आया, पर फिर तंदुए दा योर चलिया, ते हाथी नूं खिंच के ओ पानी दे

अठारह किवन कि नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती कि नहीं कया मैं कुले वडाई कि नहीं कया बाह बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा कि नहीं भव

मन तन तेरा तन भी तेरा तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा।

पाच्छा, बख्शिश कर रहे हैं चरण छिलो मार्ग गोविंद। एकेड़ा मार्ग है जिथे जीव चल के अपना लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला कर सकदा। ओ मार्ग है उस्तत मन में कर निरंकार, हर वेले अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दी उस्तुति करनी ओदे गुण गाउणे। ए मार्ग है जिस करके जीव भव सागर तो पार हो सके। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो। ए रसना पवित्र हो जाती है जदों नाम दा अमृत पींदी है, जपदी है श्री वाहेगुरु। निर्मल रसना अमृत पीवो सदा सुहेला, कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर कारण। जिन्हां दे हिरदे विच नाम दा अमृत समा गया उन्हां नू फिर संसार दे लोग अकाल पुरख वाहिगुरु दा परिवार नजर आउंदे हन। जे उदा परिवार है तां एक पिता एक सिखे हम बारक। साडा एक पिता है ईश्वर और असी सारे ही उसदे बारक हां। ऐसी दृष्टि हो जाती है नाम जपन दे नाल के ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हजूर बख्शिश कर रहे हन के नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग। सत संगत विच बह के अकाल पुरख दे गुण गाउन नाल तेरिया होर माड़िया जितनिया भी आदता हन संगता हन वो आपे ही तेरा पिछा छड़ जानगी। आओ सारे प्यार दे नाल जपिए।

चांदा ते है तू परमात्मा दे नाल मिला, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो ता तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसी चंगियाई नाल है, शुभ गुना करके है, शुभ कर्मा करके है। जे शुभ गुण नहीं, शुभ कर्म नहीं, ते वो चंगा किवें हो सकदा है। साहिब कथन करदे ने कि परमात्मा नाल मिलाप ते हर कोई मनुख चाहुंदा है, कि मेरा परमात्मा नाल मिलाप हो जाए, मेरा संबंध जुड़ जाए। पर किवें?

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल के मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परे तकना के परमात्मा रूप

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला हो, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिए ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

विश्वास काती अकिर्त कन में कोई ना रखन। विश्वास काती अकिर्त कन, विश्वास काती किसनु कहंदे ने, जेड़ा किसी नु प्यार विच ले आके बसा के मारे, अपना बना के मारे।

नजर ना पै जाए। अगर अकिरत खान दी नजर पै गई ए भोजन व्यर्था चला जाएगा। आप भाई गुरदास जी कहते अकिरत खान दी नजर भी इतनी पैड़ी हुंदी है जे पत्थर ते पै जाए।

फिर तुसीं दसो कि अपने अवगुण किवें बख्शाए जा सकदे ने। ओ सतगुरु साडे अवगुण बख्श भी देवेगा। भाई साहब कहिंदे ने, मैं विश्वास नाल कहिंदा वा कि हे मनुख तू अवगुण करने छड़ दे, ओ परमात्मा तेरे अवगुण बख्श देवेगा। ऐसा नहीं कि अवगुण भी करी जाए ते नाल दी नाल बख्शाई भी जाए, नहीं एक दिन तौबा कर ले, ओ ते बख्शन योग है ही, उन्हें ते बख्शते रहना है। पर ऐसी गल नहीं कि तू अवगुण करदा ही चला जावे, नहीं तू तौबा कर, सतगुरु दा सिमरन कर।

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आए, वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दिंदा, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दिंदा। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवी, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे